0: ए रामलौटन भाइ, के गर्दैछौ?
1: नमस्कार सुरेश दाई, यत्तिकै बसेको, आउनुहोस् चिया पिउन। छोरी,
2: हजुर,
1: जाऊ त दुई गिलास चिया बनाएर ल्याऊ।
2: हस् बाबा।
0: छोरी त ठुली भइसिन्, कति वर्ष?

0: ये है आपका रेडियो, रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।
1: गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए।

0: कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त एवं परामर्श चिकित्सक सम्पर्क नम्बर 98480 27590 र 081-534-328 फेरि सुन्नुहोस् है 98480 27590।
1: गर्जन सधैँ बाग झैं रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।